किताबीरे पहाड़ी मेचागी खंजेल दा दोनेश्वर कोंसमना सैरेंगबा सगोलसिम तिजेंद्र ने सैरांगबा इसई फिल्म इसई खुदुल के अनि सुबदा लेजरे अतियागी मिनोक फिल्म दगी रणबीर थौना न सकबा दोनेश्वर कोंसमना सैरेंगबा अमदी जी सुरचंद्र शर्मना सैरांगबा इसई।

तबीरे कुमुक्जम रोमा देवी ने सकप नोट गौरांग वर्णन आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अमुक लेजरे मोयरांगथेम बिशेषोर न खोंबा मेंडोलिन।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजायुकी पुंग निपाल तारे दिल्लीदगी रिलेदा समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज अमदी शिलोंगदगी रिलेदा अवांग नोंपुक लमदमगी पाव मथंग मथंग ओइना फंबिरगनी
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव आर्थिक चुनौतियों जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव निवेश के बिखरे हुए प्रभाव बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
2: India's engagement with the Global South.
3: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एकजुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
1: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायियों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
5: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यू परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
1: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।

0: आता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वत से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
3: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
4: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
5: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
4: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
6: मैंने पास PGVCL का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए

0: सब्सिडी भी मिली।
1: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नव भारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जाँच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges. Also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion US dollars. US President Donald Trump backs India-Middle East-Europe economic corridor, stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. Dr. Jayshankar said the global situation was marked by increasing conflicts, pressure on supply chains and trade, fragmented investment flows, growing debt vulnerabilities and inadequate development finance. He said Global South countries should work together to address key challenges including supply chain, finance and connectivity bottlenecks.
5: We can see that in conflicts and geopolitical tensions.

आकाशवाणी इम्फाल कंगला चैनल दा हौजिक अमुक ताबिरसी फिल्म इसई लांथोक्चगदौरिबा फिल्म खुंगंग अदुने फिल्म असिगी आहान बैसैदा ताबिरसी लाइस्रम मेमन सकपा बी जयंत कुमार शर्मना सैरेंगबा जयंत कुमार मदि ओकेन अमाक्षम अनीना सैरंग बैसै

0: Ningumbam Rupa Chandra Singh Amadi Lashram Mema Anina Satpa B. Jayanta Kumar Sharmana Sairengba Jayanta Kumar Amadi Okena Maksam Anina Sairangba Khungang Aduni Film Gi Isai Tahan Jabaga Loinana Film Asi Gi Isai Lanthok Jaba Matanga Sita Loichare Agas Bani Imphal Haujik Tabi Rashi Ikai Khumna Jaraba Bharat Ki Pradhan Mantri Sri Narendra Modi Na Miyam Gi Seba Taurakpa Sahi Kunmanga Amap Surakpa Gi Akhanapa Thauram
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो वित्तीय हो ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
2: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खोलने से।
1: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
3: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम हैं। हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया
1: सुरक्षा
3: और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन ऑपरेशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।
1: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलेटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलेटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं, उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं। और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं?
2: जैसे आपने जैम की बात कही, जैम का है जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है। और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उतनी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू के काम होता है।
1: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, क्योंकि आम तौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया, तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता, अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
3: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है
1: जी?
3: भाई हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए यानी कि जनधन आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और वो महिलाएं भी कौन जो ग्रामीण इलाके में हैं। तो अब देखिए देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है। और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है, ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है। जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा। तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है जिसपे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्क संगत फैसले लेती हैं वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
4: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59 करोड़ 9 लाख से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन

0: खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,19 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
2: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है?
2: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है? अब देखिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहाँ तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में है, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में है। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है और उनके लिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है? हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए, और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी

0: मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है। और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियलिटी प्रोजेक्ट्स आने लगे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं। यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने घर बनाया और आप जब 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो बना रखा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम बाकी के दिनों के लिए हम उससे संसाधन का इंतजाम कर सके। ध्यान रखिए कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पहले भी था लेकिन अब उसकी जो जिस तरीके से इसको कहा जाना कि समय के हिसाब से बदलाव करके उसको उपयोगी बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
1: बिल्कुल, और अरोड़ा साहब हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गांव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई या आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
2: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है, जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, खास तौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5 लाख तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए की फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की, तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान ली 5000 की हुई है, 5000 की उनको 10000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का, या डिसेबिलिटी, फुल डिसेबिलिटी तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपीज सालाना केवल, और 31 मई को कटता है, 1 जून से पॉलिसी शुरू है।

0: करके 31 मई के लिए, तो 20 रूपीज के ऊपर 2 लाख रूपये तक का, 20 रूपये होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है, और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रूपये, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया, और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए, 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है, खाना है, इलाज कराना है और सीधा आप साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं, कोई पैसा कोई पेमेंट कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
1: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ, इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है।
2: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या, झाड़ू लगाना है क्या। लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं, और बीमारी कभी किसी को आ जाती है, तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है, जो हमारे निम्न आय वर्ग है, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर हैं,
0: लिमिटेड।
2: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान में आप आओ, फिर शौचालय की बात आप करो, फिर आप आरोग्य मंदिर जाओ, फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम अप अप्रोच है, कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से आपने योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
1: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
0: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेट्रल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब है जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें

0: बैंको द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपए, पहले 10,000 रुपए था, अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकंड जो भाग में अगर वो 15 अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपए तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिबिल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर रही है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है। और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है, जो एक कभी ये बैंक की तरफ आ ही नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था। आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा। और तभी ये पहली भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी ये कितना बड़ा बदलाव हो गया, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं, और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे, उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें। यानी एक तरह से एक सुविधा होगी, 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज।
1: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे, कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल होने के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
2: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है, या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
1: जी जी,
2: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉगिन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप भी कर रहे होते तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
1: जी,
2: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और इस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
1: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
0: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112 या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका उसके ऊपर लॉगिन कर
2: और जल्द से जल्द करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद धन्यवाद
2: नमस्कार।
4: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: तबीरे इकाई खुमला जरब भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना मियाम की सेवा तौरप सही कुनमंगा सुरक्पगी अखन्न पथौरम।

चलो चरे अदम थोरम ताबिरी बस आकाशवा इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दगी हौजिक संगाई चैनल की मखा तारक्प थोरम सिंह लाथोपीनगीदमता अनाउंसर लोटोंबम रंजना कुछनेसाई अगनब अयुक्ति नाइरब संगाई चैनल की थोरम क्या लाथोपीरमी लेंथोबू हागर फोदरी मेघाहर्ज महुम दशमी मंगा सन्दोरीब आकाशवा इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल थोरम ताबिरीब खुवाई पुनमु लोटों।

नकया चक्की बनकया लेमु बनकया चागा चादी लंबी दल्ला मांग नरबर बाबू हो बाबू हो बसा नंद बाबू।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
1: श्रोताओं, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
1: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ न कोई ट्रेन है और न जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
2: जी।
1: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
1: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया
2: जी।
1: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
1: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी
2: जी,
1: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
2: बिल्कुल।
1: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
2: जी,
1: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
2: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
2: जी,
1: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
2: जी।
1: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
2: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
1: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
2: जी।
1: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
2: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
1: जी।
2: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
1: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
2: जी।
1: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
2: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
1: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
2: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहां पहुंचता है जहां वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
1: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है, इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
2: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक।
1: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, और शीर्षक है We Are Going to the Zoo।
2: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
3: Children, Have you ever visited a zoo?
4: A zoo?
3: Yes, a zoo.
4: Oh yes.
3: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
4: Tiger. Lion.
3: Yes.
4: Monkey. Birds of different kind.
3: Very nice.
4: Camel. Giraffe. And so on.
3: Oh wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
4: Ready!
3: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
4: We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: And a lion too.
4: And a lion too.
3: We are going to the zoo.
4: We are going to the zoo.
3: The monkeys swing and climb.
4: The monkeys swing and climb.
3: They know it's feeding time.
4: They know it's feeding time.
3: The polar bear and seals.
4: The polar bear and seals.
3: Enjoy their fishy meals.
4: Enjoy their fishy meals.
3: Yes, we are going to the zoo.
4: We are going to the zoo.
3: The snakes all slide along.
4: The snakes all slide along.
3: The skunk just makes a pong.
4: The skunk just makes a pong.
3: The tiger gives a roar.
4: The tiger gives a roar.
3: He wants to eat some more.
4: He wants to eat some more.
3: We are going to the zoo.
4: We are going to the zoo.
3: Yes, we are going to the zoo.
4: We are going to the zoo.
3: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
4: Yes!
3: All right. So now, what will we do?
5: We will hum and we will sing along.
3: Yes, we will hum and sing along.
4: Yay!

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो

0: करूं। तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी परेशान होने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्या हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए।
3: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है, देखो डाकिया आया।
4: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिया का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
5: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें।

0: जाते
1: किसी एक दिन।
2: एक दिन जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा,
1: देखो डाकिया आया।
2: चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
3: डाकिया अंकल,
4: आओ बेटा।
3: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
4: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
3: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
4: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
3: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
4: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
3: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
4: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव-गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
3: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
4: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
3: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
4: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
3: ओह, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
4: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
3: डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
4: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
3: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, धन्यवाद डाकिया अंकल।
4: धन्यवाद चंचल।
5: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

0: ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯥꯒꯁ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 25ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ
1: शुक्लंबरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्यायी सर्व विघ्न प्रसन्नतये श्रीकृष्णायु वसुदेवायु देवकी नंदनायु नंद गोप कुमारायु गोविंदायु नमो नमो पंकोरो भरमंदी भरमंदं मूर्खा विदारथ भेदभावे जत कृपालेश मार्तिनु वंदितं गुरुमेश्वरं सुत्तगी मचा सौती नहाय मुनि सभा पुनमक ताबियु हंतक लिन पुनमकी लैरिबा नागराज इराबोट मान सिंदना मसनबु थाज योंजबायदना लैररी कनादा इसन से थाजिगे इसनबु थाजरियेरगा आइखोगी लिन पुनमक्सिगी अवाबसी कोकदगेदना लैरिंगै जन्मेजोगी जैगदगे खोइबु ngाकदबसी कनादा थाजजिगी एदना लैरिंगै जरकारु कौवा महामुनिसी लाएरगा हंग हंगदना लाक्तना यौसलागा आइग मिंग मानबा जरकारु कौब लैब्रा जरकारु कौब लैब्रा आयदना हंग हंग लाअरी करीगी नो हंगबद आइग विवाह वेरेरगा आइग प्रतिलोक लैरिब पुनमक्से सर्ग मुक्ति फंगननबगीदमक लाक्जरीबनी हायररी सिदा नागराज इराबोट ताबद नुंगाइजै आइगी वंश पुनमक लैरिब आइ माइ साबतगी नानथु एरगा अफब ओइननबगीदमक खन्दन लैरिबनी हौजिक्ति आइगी इसनसि थाज योंजब मतम चारे जरकारु कौब महामुनिसिद आइगी इसनसि प्राण कलह लगे लै हाइदना हाइजररी महामुनि आइगी इसन जरकारी कौब मलै महामुनिग मिंगसु मानरे विवाह कर्म ओइबदो यारनीयदना वफमसि हौदोररी जरकारु मान थिजरैसु सोबंश प्रतिलोक पुनमक्सि मुक्ति फंगननबगीदमक विवाह ओइननबायदना लांगरीमनी अदुबु जगसे अंगकपनी विवाह ओइबायबसि अनिगी विवाहदना चेन चोंगदना याम कन्ना इराबोट मनाव मयामसिग होनदना मसनबु थाज योंजब विवाहबसि ओइगिरी सिदा विवाह ओइबा ओइबायदन ओइगिरीबसिगी हराव जरीबसि अतैगी नट्टी मसनगी गर्भधगी उदोय ओइदोरीबा ममाक्तुगी हाकतक लिन पुनमकी अफबायबसि ओइरदौरी अदुबु कमदौनु ओइरीबनो वारीसि जरकारु जरकारी अनि विवाह ओइदन ओइबायबसि ओइगिसन सोमदा कमदौरी सुतगी मसा सौती नहाइररी विवाह ओइदन लैगिसनु अदुबु कमदौरीगेबु होस्टिनागी पालरीबा परीक्षित आइदना निंथौम लै परीक्षित आइदन पालरीब निंथौसि मतमगी मतुंगिना मा विद्या कयासि कृपासाजदगी तम्मे धनुर्विद्या अस्त्रविद्या मल्लविद्या वेदशास्त्र कयासि कृपासाजन तम्बीदना मसिदा परीक्षित निंथौ मागी लैबाक ङाक्लोन कयासि तम्दना निंथीन प्रजासि पालो लोइदना याम नुङाइन परीक्षित होस्टिनाद पाले परीक्षित निंथौ होस्टिनाद याम नुङाइन पालाव कान नोंमदि खंहौदि मा लिरुंसि पायरगा मिरग्या निंथौ राजगि हौनबि बोन्द मिरग्या सट पायदना लिरुंसि पायरेरगा बोन तम्ना निंथौसि दोलाइ थौदना लाख्रीम खंहौदना गुरु बोन मैधे बोनगि मयाइ यौरब कानसिदा मै ममांग मक्तद चोंथोरक्तना चाउगरब मिरग्या सजिम चोंथोक्तना चाररे सजिदु उबदा राजा परखे लिरुं खुदुम चेन पाइखली तेनोंदगी तेन सली तेनगी संध्यान एत थाय आकर्णापुरी लिरी नहुम फंगन सिंगी येंगेरग सजी थाउ पालु ओइदर मचिन्द नियोम मंत्र सोंदना सजी तम तेन से फलन एत तमग्री ꯇꯦꯟꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯁꯖꯤꯗ ꯊꯥꯡꯒ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯖꯤꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯜꯂꯔꯤꯌꯦ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯃꯥꯅ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯈꯜꯂꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯔꯈꯦ ꯁꯤꯔꯒꯗꯕ ꯁꯖꯤꯗꯣ ꯗ꯭ꯔꯩꯕ ꯖꯣꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯔꯤꯒꯦꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯥꯔꯕ ꯇꯦꯟꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯪꯉꯕ ꯁꯖꯤꯗꯣ ꯁꯤꯔꯒꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯒꯨꯔꯨ ꯕꯣꯟ ꯃꯩꯗꯤ ꯕꯣꯟꯒꯤ ꯑꯁꯣꯡꯕ ꯇꯝ ꯇꯝꯗꯅ ꯁꯖꯤꯗꯨ ꯐꯟ ꯐꯟ ꯆꯣꯡ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯥꯔꯕ ꯁꯖꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯇꯣꯛꯇꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯔꯗꯕꯅꯤ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯁꯖꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜꯁꯤ ꯂꯤꯔꯨꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯖꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜꯁꯤ ꯂꯤꯔꯨꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯖꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯗꯅ ꯒꯨꯔꯨ ꯕꯣꯟ ꯃꯩꯗꯦ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯕꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯆꯪꯖꯜꯂꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯕꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯈ ꯎꯖꯥꯎꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯧꯅꯤꯕꯔꯇ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤꯁꯤ ꯐꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤ ꯁꯃꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯖꯜꯂꯒ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯁꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯥꯗꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯖꯤꯗꯨ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯥꯗꯅ ꯁꯖꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯉꯔꯤ ꯃꯨꯅꯤꯅ ꯃꯧꯅꯤꯕꯔꯇ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯃꯤꯅ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯍꯪꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯙ꯭ꯌꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯗꯣ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯕꯥꯔ ꯕꯥꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯉꯤ ꯈꯨꯝꯗꯦ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯣꯁꯤꯅꯥꯒꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅꯤ ꯑꯩꯃꯛꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯕꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯖꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯎꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯁꯖꯤꯗꯣ ꯈꯪꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯝꯇ ꯈꯨꯝꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯩ ꯔꯥꯖꯄꯟꯊꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯥꯞꯇꯅ ꯇꯥꯍꯧꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯈꯨꯜꯂꯨꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯛꯁꯝꯗ ꯌꯦꯠꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯗꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯄꯟꯊꯗ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯤꯟꯗꯣ ꯄꯔꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯥꯄꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯃꯧꯅꯤꯕꯔꯇ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯉꯛꯁꯝꯗ ꯊꯣꯛ ꯌꯦꯠꯁꯜꯂꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔ ꯅꯪ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯤꯗꯣ ꯀꯔꯣꯝ ꯆꯠꯈꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯖꯤꯅꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯪꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩꯝ ꯍꯥꯏꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯣ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯡꯉꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯎꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯧꯕ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯎꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯧꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯨꯅꯤꯗ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯔꯥꯝꯄꯟ ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕꯁꯦ ꯂꯤꯟꯁꯤꯅ ꯌꯦꯠꯇꯅ ꯁꯣꯏ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯨꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯔꯕꯔ ꯆꯦꯜꯂꯛꯇꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯁꯦꯔꯤꯡꯒꯥꯗ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯇꯝꯃꯔꯦ ꯁꯦꯔꯤꯡꯒꯥꯗ ꯃꯁꯥꯏꯕꯨꯡꯑꯣ ꯅꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯎꯖꯥꯎꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯃꯉꯛꯁꯝꯗ ꯌꯦꯠꯇꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯁꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯛꯁꯝꯗ ꯂꯤꯟꯅ ꯌꯦꯠꯂꯔꯦꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯤ ꯔꯤꯁꯤꯠ ꯁꯔꯤꯡꯒ ꯁꯔꯤꯡꯒ ꯃꯥ ꯈꯥꯡꯂꯥꯛ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯇꯝꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯇꯅ ꯂꯦꯞꯄꯔꯤ ꯄꯔꯕꯔꯞ ꯆꯪꯖꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯌꯦꯠꯂꯤꯕ ꯂꯤꯟꯗꯣ ꯁꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤꯡꯒ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯕꯨ ꯈꯪꯁꯅꯨ ꯀꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯉꯛꯁꯝꯗ ꯑꯁꯨꯕ ꯂꯤꯜ ꯑꯁꯤꯕ ꯌꯦꯠꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯕꯨ ꯀꯤꯍꯟꯒꯦ ꯈꯪꯍꯟꯒꯦꯗꯅ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯔꯤꯡꯒꯅ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯤꯅꯥꯒꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒ� ꯃꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯥꯔꯕ ꯁꯖꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯒꯜꯂꯗ ꯈꯪꯁꯅꯨ ꯀꯤꯁꯅꯨ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯂꯤꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯠꯂꯒ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯡꯕꯗꯤ ꯁꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯝ ꯊꯦꯡꯂꯗꯅ ꯍꯦꯠ ꯁꯩꯇ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯅꯤ ꯍꯦꯠ ꯁꯨꯕꯗ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯈꯪꯁꯅꯨ ꯀꯤꯁꯅꯨ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯤꯛꯇꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯥꯞꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯁꯥꯞꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯕ꯭ꯔꯝꯃ ꯄꯥꯏꯀꯅꯤ ꯁꯥꯞꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠ ꯁꯥꯞꯁꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯨꯅꯤꯁꯦ ꯃꯃꯤꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯔꯤ ꯍꯔꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯔꯤ ꯍꯔꯤ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪ ꯉꯁꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠꯇ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯁꯥꯞꯇꯣ ꯀꯟꯃꯜꯂꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯥꯞꯅꯤ ꯖꯒꯠ ꯙꯔꯃ ꯃꯥꯡꯉꯅꯤ ꯖꯒꯠ ꯙꯔꯃꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯜꯂꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠꯅꯤ ꯖꯒꯠ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯕꯨ ꯄꯥꯂꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠꯅꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯕꯨ ꯄꯥꯂꯣꯜ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠꯇꯨꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯂꯕ ꯕ꯭ꯔꯝꯃ ꯁꯥꯞꯇꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯅꯕꯒꯦ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯝꯃ ꯁꯥꯞꯇꯨ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯝꯃ ꯁꯥꯞꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯟꯇꯣ ꯖꯒꯠ ꯙꯔꯃ ꯃꯥꯡꯉꯅꯤ ꯙꯔꯃ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯟꯇꯣꯛꯎ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤꯡꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯥꯞꯁꯤ ꯂꯥꯡꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯉꯩ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯃꯣꯍꯣꯟ ꯗꯤꯛꯁꯥ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯖꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯖꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯞꯁꯦ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯥꯡꯉꯔꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯔꯗꯕꯅꯤ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯞꯁꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯤꯔꯣꯔꯦ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯃꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯎꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯖꯒꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯥꯂꯣꯜ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯅ ꯄꯥꯜꯂꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯨꯅꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯜꯂꯒ ꯂꯤꯟꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯠꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯖꯒꯠ ꯃꯥꯡꯉꯅꯤ ꯙꯔꯃ ꯃꯥꯡꯉꯅꯤ ꯀꯝꯗꯧꯁꯤꯒꯦꯗꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥꯊꯥꯅꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯍꯣꯁꯇꯤꯅꯥꯗ ꯗꯔꯕꯥꯔꯗ ꯑꯝꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤ ꯀꯜꯍꯧꯅꯅꯕ ꯖꯒꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯀꯅꯥꯊꯥꯒꯗꯒꯦꯗꯅ ꯈꯟꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯅꯥꯏ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯀꯧꯔꯤ ꯒꯧꯔꯃꯨꯈ ꯀꯧꯕ ꯃꯅꯥꯏ ꯆꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯒꯨꯔꯗꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯆꯠꯂꯨ ꯍꯣꯁꯤꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯁꯥꯞꯁꯦ ꯁꯨꯝꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯔꯦꯈ꯭ꯌꯥ ꯗꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯡꯉꯨꯁꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯒꯧꯔꯃꯨꯈꯗ ꯒꯧꯔꯃꯨꯈꯅ ꯈꯣꯔꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯣꯁꯤꯅꯥ ꯗꯔꯕꯥꯔ ꯆꯦꯜꯂꯛꯇꯅ ꯗꯔꯕꯥꯔ ꯏꯌꯥꯏꯗ ꯁꯣꯔ ꯊꯥꯕꯦꯠ ꯊꯥꯕꯦꯠ ꯆꯅꯤꯡ ꯂꯩꯆꯥ ꯂꯩꯇꯥꯖꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯦꯗꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯈꯣꯔꯝꯃꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯒꯦꯗꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯁꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯔꯤꯡꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯔꯤꯡꯒꯅ ꯁꯥꯞ ꯄꯤꯗꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯕꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕꯒꯤ ꯉꯛꯁꯝꯗ ꯁꯃꯤꯛ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯉꯛꯁꯝꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯂꯤꯟꯕꯨ ꯌꯦꯠꯁꯜꯂꯒ ꯈꯪꯑꯁꯅ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯅ ꯃꯆꯥꯏꯕꯨꯅ ꯁꯥꯞꯁꯤ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯇꯝꯃꯔꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯔꯈꯤꯠ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅ ꯌꯧꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯍꯔꯤ ꯍꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯨꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤꯗꯨꯅ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯑꯁꯤꯕ ꯂꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯠꯂꯨꯕꯅꯤꯗꯀꯣ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯖꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤꯗ ꯂꯥꯡꯉꯨꯕ ꯑꯄꯔꯥꯙ ꯗꯣꯁꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯅ ꯁꯥꯞꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯕꯔꯃ ꯕꯥꯏꯀ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯧꯅꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯣꯀꯣꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯧꯈꯠꯂꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯁꯤ ꯀꯣꯀꯣꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤ ꯍꯩꯔ ꯍꯩꯕ ꯃꯨꯅꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯀꯧꯈꯠꯇꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯚꯛꯇ ꯕꯩꯁꯅꯣꯕ ꯃꯨꯅꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯆꯤꯡꯅꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯕ꯭ꯔꯃꯠ ꯁꯥꯞ ꯐꯪꯂꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯅꯥ ꯔꯣꯒꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯍꯥꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯀꯌꯥ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯨꯅꯤ ꯔꯤꯁꯤ ꯚꯛꯇ ꯕꯩꯁꯅꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯨꯅꯤ ꯔꯤꯁꯤ ꯚꯛꯇ ꯕꯩꯁꯅꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ Madudi kamdo gudege masidi aidi barma baika manghan bo pamdi aigi isa lai bo janmi soise rasingasan da thangat piropnage rasingasan ji sinare gai bo magi wakhan da lepe mantri gi mantra na oina tanab singdu man kaya yaning da dana masa janmi jai bo rasingasan da thangat piram yerga masidagi lining bo satlage epsi magi wakhan da sab et yugna lepi Bairai oi dana gangai kongban jomunai kongban da shallagi epsi leptana sajun punamaksi kok loi loi raga mas langri masa manai patra mitra mantri gi mantrana leiri bu punamaksi kok loi na tanari epsi logi bu lai khidre parkhit raja lining urage masida parkhe ma aroi matang do soi dana phangarani khangbadagi jomunai kongban da haidirektana lining dana leirari Masida oise asoku mapi mapa oibagi phaba phabaibsi leibak parja leiriba matri mandor mayam sina nungsigriba leiriba gurujon mayam sina prem leigribsi raja parikhina haidaraktana jomunai khongban lining leigibsi aroi matang yogpa phongai ribsi punamaksi mayumda nungaine leithopa ngamnadre mai mai maharaj gi naktsalasi I quite maharaj gi nakta yorur si edana lady ba masa manai patra mitra lady sing ji kirik kirik inana lo ina hai daraktana jomunai khongan khongban si de lo ina tillare haujik se I quite maharaj si top dhyan dogdana lining gi aroi matang si phangna na bu hai ri adu su adu bu I quite mayam changdana rekha daya oina ngak thu osi edana mayam punamuk si manaraga jomunagi ra dramada Pops, Kaya, Pazan and Ningteen, a partner Hari. Hari will Pops in Motata Rustumbo. You be him, head the Yumi. You be to be Matata Amuk Harvani. You be to be Matata Hari to the Amuk. Parikit, Maharaj Bunil Lingel Lerga. Mother of Brahmon, Bashno, Lady Munirisi, Kayasina. Be the Mantra Tea than a Nakshendana. Amuk Kulai Pipe, Palon Palon Palon Tarek Nga Avadi. Take hook Munigi. Mustake hook, Lingi, who in a car by himself, wait hookloy. Adu the hoggy sit long as he is in a Masaman I patra mitra yam gravo. Ningtogi Masaman I mayam sin a sienderectana gangai kumban, Jomunai kumban, lady, she the sour of Poma red the harim. Pope give attack the sour of a stumble, yumbi a muk yung. Yumbi give attack the sour of Poma harirga. Parkit ning tobu ling the lerga, mother the parkit, nam swandana. Later, Sidani, Lakripo Munirisi, Bakta Bashno, Mayam Sizu, Maharajki, Panana, Maharajki, Panana, Taikok Mana, Sangatana, Tarini, Subunu, Mita Chipangam, Danavai, than a cocoa loina, Manmana Hijabi, beer the mantra tea than a Manamana Hijabi, Oxadi, Saitokana, Manamana Hijabi, Mong, the Naktana, Kulai Paiva Kayana, Polon, Polon, Naktana, Kaya, Ningtina, Lady Munishava, Tabu. Yam Pajan and Tin and Nakshin and Lager Batum was Zagani. Pazai Jomunai Kumba and the Kana sang the Navaidana. Lagri, Lagison, Som the Kamdo Rigabu, Som the Sumatamasi, Dini Dini, how we were Kangu Ponati, Nasi of Se, Adam, how we were Kangu de, Hayendu Nasi worked the Nap, Numitarini, if she a hoggy were Kangu Ponati, Tarini, this was a love considered the Kamdo Re. Tarin is Suzala considered the Taikoksi Lakrimni Burmasa Lang River Perkit Rajabusi Uragadan Taikokma Lakrimni Guru Bonamide Bongilambi the Lakpakan Matamsi Angakpani Perkit Raja Se Burmasa Pange Taikok Chicken Arrow Wero Tarini Divesi Pausi Pang with a pretty Punamuksi Lu in the Tannery. Tava the Kanai Muni, she bucked the bush knob loy pung mother. Kashop Muni, so pause in pung mother. Kaidurugano, I used to some late hope for the Hongadre. Lady of Brahman bucked the bush knob, my am share.
2: ꯃꯥ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯂꯣꯏꯅ ꯕꯦꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯊꯤꯗꯅ ꯂꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩꯁꯨ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯜꯂꯨꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ, ꯙꯔꯃꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯕꯨ ꯄꯥꯜꯂꯣ ꯂꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠꯅꯤ, ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯀꯜꯂꯨꯒꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯄꯔꯞ ꯄꯔꯞ ꯄꯔꯞ ꯂꯥꯛꯄꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯀꯩꯁꯣꯛ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯀꯩꯁꯣꯛꯀ ꯃꯨꯅꯤꯒ ꯇꯩꯈꯣꯛꯀ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯅꯦ, ꯕ꯭ꯔꯃ ꯁꯕꯥ ꯇ ꯆꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯣꯝꯅ ꯈꯜꯂꯤ, ꯀꯩꯁꯣꯝꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯂꯤꯟꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯥꯒꯔꯥꯖꯅ, ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯄꯔꯞ ꯄꯔꯞ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯦ, ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯤꯡꯅ ꯇꯍꯥ ꯇꯍꯥꯅ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯆꯠꯂꯦ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯏ ꯍꯪꯉꯒꯦꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯅꯥꯒꯔꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯌꯦ, ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯡꯅ ꯊꯨꯅ ꯇꯥꯍꯤꯡ ꯇꯥꯐꯤꯡ ꯇꯥꯐꯤꯡ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯀꯩꯁꯣꯞ ꯃꯨꯅꯤꯅ ꯘꯨꯃꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯥ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠꯁꯦ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ, ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯕ ꯃꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯀꯜꯂꯨꯒꯦꯗꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤꯗꯅ ꯈꯨꯝꯃꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯩꯈꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯂꯤꯟꯅ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯁꯣꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯨꯅꯤꯗꯨꯅꯤ, ꯀꯔꯤ ꯅꯠꯇꯤꯛ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯟꯗꯧꯔꯤꯕ, ꯅꯥꯒꯔꯥꯖ ꯇꯩꯈꯣꯛꯅ ꯆꯤꯛꯑꯒꯗꯕ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯕ ꯄꯔꯤꯈꯤꯠ ꯔꯥꯖꯥꯕꯨ ꯀꯜꯂꯨꯅꯤꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯅꯠꯇꯤꯛ ꯂꯩꯒꯦꯁꯤ, ꯑꯩ ꯒꯨꯔꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯖꯕꯗ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦꯗꯅ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯆꯠꯂꯨꯅꯨ ꯆꯠꯂꯨꯅꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯇꯥ ꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ, ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯦꯡꯖꯔꯨꯒꯦ ꯈꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯝꯅꯤ, ꯌꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯂꯤꯟꯅ ꯁꯥꯎꯔꯗꯅ ꯇꯩꯈꯣꯛꯑꯕ ꯂꯤꯟꯗꯨ ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯔꯤꯆꯣꯏ ꯍꯪꯂꯤꯕꯁꯦ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯑꯩꯅꯤ, ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯛꯀꯦ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯠꯇ ꯂꯦꯝꯅ ꯇꯣꯏ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯟ, ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯛꯄꯨ ꯆꯤꯛꯑꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯨꯅꯕꯨ ꯊꯦꯡꯉꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯖꯒꯠ ꯀꯅꯥ ꯀꯟꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯩꯈꯣꯛꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕ, ꯀꯩꯁꯣꯞ ꯃꯨꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯪꯅ ꯆꯤꯛꯀꯦꯔꯥ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯛꯀꯦꯔꯥ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯅꯤꯗꯅ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ, ꯀꯜꯂꯨꯒꯦꯗꯅ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯤ, ꯐꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇꯤꯛ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯒꯦ, ꯑꯩ ꯒꯨꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨ, ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯕꯣꯠ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯕꯣꯠ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯤꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ, ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯛꯏꯕ ꯍꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯝꯂꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯃꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ, ꯑꯩꯅꯕꯨ ꯆꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯦꯝ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯩꯈꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯁꯣꯞ ꯃꯨꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦꯔꯒ ꯃꯌꯥꯁꯦ ꯀꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯕꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯥꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯨꯁꯤ ꯁꯔ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯝꯖꯟꯕꯗ ꯃꯥꯡꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ, ꯂꯤꯂꯥꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯔꯤꯒꯦꯕꯨ, ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯔꯁ ꯖꯣꯅꯣꯝ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ, ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯀꯨꯞꯄꯗ ꯎꯠꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯨꯅ ꯀꯥꯝꯖꯜꯂꯛꯄꯗ, ꯀꯩꯁꯣꯝ ꯃꯨꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯟꯗ ꯅꯨꯡꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯜꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯍꯨꯁꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯠꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯕꯣꯠ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯎꯠꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇꯨꯗ ꯆꯪꯖꯜꯂꯒ ꯎꯠꯇꯨ ꯈꯔꯗꯪ ꯂꯧꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯦꯡꯕ ꯂꯪꯕꯣꯏ ꯂꯥꯡꯕꯗ ꯃꯥꯡꯉꯨꯔꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯣ ꯃꯥꯡꯉꯨꯔꯕ ꯅꯤꯄꯥꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯅꯤꯡ ꯍꯨꯟꯗꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯍꯧꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯩꯈꯣꯛꯅ ꯍꯔꯤ ꯍꯔꯤ ꯕꯥꯛ ꯁꯛꯇꯤꯒ ꯂꯩꯇ ꯅꯨꯡꯗꯕ ꯃꯨꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯕꯥꯛ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯜꯂꯔꯤꯕ ꯕꯥꯛ ꯁꯛꯇꯤ ꯀꯩꯁꯣꯞ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯦ ꯍꯤꯡꯉꯅꯤ, ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯤꯡꯉ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯡꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯔꯅꯤ, ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯗꯕ ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯅꯥꯒꯔꯥꯖ ꯅꯠꯇꯦ, ꯇꯩꯈꯣꯛ ꯅꯥꯒꯔꯥꯖꯅ ꯁꯤꯡꯒꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯥ ꯌꯧꯅ ꯁꯤꯡꯒꯦꯕꯨ, ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯉꯥꯏꯕꯤꯀꯣ ꯃꯨꯅꯤꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟꯒꯤ ꯍꯨꯅ ꯆꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯕ꯭ꯔꯍꯃ ꯁꯥꯞ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ, ꯕ꯭ꯔꯍꯃ ꯁꯥꯞ ꯂꯩꯔꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟꯒꯤ ꯍꯨꯅ ꯆꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯁꯣ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯀꯟꯅꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ਬਰਮ ਬਾਇਕ ਸੇ ਅਰਿਅਮਰ ਤਹਨ ਦੌਰੀਬਰ ਏਂ ਬਿਯੁ ਅਦੁਮੈ ਚੰਦ੍ਰਨਾ ਬਰਮ ਹੋਂਦ ਥੌਇਦਬਦਗੀ ਮਹਿੰ ਕਾਰੀਮਨਿ ਏਂ ਬਿਯੁ ਅਦੁਮੈ ਇੰਦ੍ਰਨ ਮਮਿਤ ਲਿਸਿੰਗ ਪਾਲੀਬ ਸੇ ਇੰਦ੍ਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਇਕ ਅਬੁ ਥੌਇਦਬਦਗੀ ਮਮਿਤ ਲਿਸਿੰਗ ਪਾਲੀਮਨਿ ਬੇਗੂਗੀ ਪਾਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਦ ਥਮਰੀਮਿ ਜਗਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਲੈਬਸਿ ਉਲੋਕ ਸਾਉਗ੍ਰਭ ਅਦੁਮ ਲੋ ਸਾਉਗ੍ਰਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਇਕਬੁ ਮਹਾਮੁਨਿ ਨੰਗਸਿ ਲੇਂਬਿ ਏਰਗਾ ਮੰਗਨਗਨਿ ਨਿਥੌਬੁ ਹਿਗਲ ਹਨਗਨਿ ਹਾਇ ਵਾਸਿਬੁ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਇਕਦੁ ਅਰਿਮਬ ਤਾਪ ਤਾਰੇਨਿ ਮਹਾਮੁਨਿ ਹਾਇਦਨ ਤੈਖੋ ਨਾਗਰਾਜਨ ਵਫਮ ਜਿ ਹੌਦੋਰਰਿ ਮਸੀਦਿ ਕੈਸ਼ੋ ਮੁਨਿਸ਼ਿ ਕਰੀ ਹੈ ਖਲੇ ਹਾਈ ਵਾਸ਼ਰੀ ਸੁਮਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਇਕਾਇਬਸਿ ਅਨੁ ਸਲੂਬਦਿ ਅਰਿਯਮ ਤਾਰਨਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਇਕਾ ਅਰਿਯਮ ਤਾਲਦਿ ਜਗਰਸਿ ਮਾਂਗ ਤਾਰੇ ਕਮ ਦੌਨਿ ਹਾਇਬ ਵਖਲਮ ਹੰਡਰਕਤਨ ਖਲਰਿ ਮਸੀਦ ਵਰੇ ਤੈਖੋਨ ਅਈ ਅਪਾਮਦੋ ਕਰਸਗਿ ਨਸੀਗਿ ਲੈਰਿਬ ਜਗਾਦਦਿ ਚਟਪੀਰੁਰਨੁ ਅਈ ਅਪਾਮਦੋ ਕਰਸਗਿ ਹਾਇਬਿਯੁ ਹਾਇਜਰਰਿ ਮਸੀਦਨਿ ਕੈਸ਼ੋਬਨ ਅਈਸੇ ਛਨਾ ਲੁਪ ਖਰਦ ਹਾਇਰਗ ਯਾਮਨ ਲਾਇਰਬ ਮੁਨਿ ਸਾਧਨ ਹਾਇਜਲਗ ਅਈ ਲੈਥਦਨ ਲੈਹੋਰਗੇ ਹਾਇਬ ਅਮ ਰੀਦਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਇਕ ਅਰਿਯਮ ਤਾਰਨਿ।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक दिल्लीदेखि लिएर दोपहर समाचार टाब फङ्बिरखनि
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
2: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली 3 व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
3: Look at what has emerged from the BRICS.
4: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
1: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
7: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2030 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं परियोजनाओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
8: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
4: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
9: माय नेम इज रमेश।
10: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
9: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
4: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
12: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवदेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

फौज भाइयों के लिए। आज बुधवार, कार्यक्रम फिल्म संगीत में प्रस्तुत है ये पहला नगमा। ज्योति स्वरूप की निर्देशन में बनी फिल्म परोसन से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल और राहुल देव बर्मन द्वारा संगीत। इस फिल्म में नजर आए थे सुनील दत्त, महमूद और सायरा बानू।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये अगला गीत है। 1970 में आई हुई फिल्म अभिनेत्री से ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के लेखक मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस फिल्म में नजर आए थे हेमा मालिनी के साथ शशि कपूर, निरूपा रॉय, असित सेन, नाजीमा, नासिर हुसैन, देव मुखर्जी, नासिर खान, बेला।

आइए सुनते हैं 1961 में बनी जंगली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है शैलेंद्र की रचना पर और संगीत प्रदान किया शंकर जयकिशन। इस फिल्म में नजर आए थे शम्मी कपूर के साथ सायरा बानो।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है, आवाज़ लता मंगेशकर की, और इस गीत के लेखक हैं आनंद पक्षी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है आपकी कसम। आपकी कसम ये फिल्म आई थी 1974 को और इसे निर्मित किया ओम प्रकाश ने। इसके निर्देशक रहे हैं ओम प्रकाश जी और इस फिल्म में नज़र आए थे राजेश खन्ना के साथ मुमताज़, संजीव कुमार, रहमान असरानी और ए के हंगर।

झुक गया आसमां। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। आइए इस फिल्म से सुनते हैं लता मंगेशकर की गायन में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन द्वारा संगीत। और इस फिल्म में नजर आए थे राजेंद्र कुमार के साथ सायरा बानू, राजेंद्र नाथ और प्रेम चोपड़ा। यह फिल्म अमेरिकी फिल्म है। हियर कम्स मिस्टर जॉर्डन का रीमेक है ये।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये अगला गीत है। इस गीत में जो आवाज है वो है गायिका लता मंगेशकर की। ये फिल्म आई थी उत्पादन कंपनियां सुरेश प्रोडक्शंस, वाहिनी स्टूडियोज, विजया स्टूडियोज के उत्पादन तले, और इस गीत में अपना संगीत प्रदान किया सचिन देव बर्मन ने। गीत के लेखक आनंद बख्शी। फिल्म का नाम है 1974 में आई हुई फिल्म प्रेम नगर, जिसमें नजर आए थे राजेश खन्ना के साथ हेमा मालिनी, कामिनी कौशल, प्रेम चोपड़ा, बिंदु असरानी, नज़र हुसैन, सुलोचना लटकर, रमेश देव।

प्रस्तुत है फौज भाइयों के लिए ये गीत जो आई थी 1966 को निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी ये फिल्म है लव इन टोक्यो। आइए इस फिल्म से सुनते हैं लता मंगेशकर के गायन में हसरत जयपुरी के लिखित बोल और शंकर जयकिशन द्वारा ये संगीत।

मैरांग जगुई कबो कबो हजी हाइजबनी पोपा ए कबो जगुई छाओ मैरांग जगुई दो कबो जगुई छागुन मैरांग जगुई छाओ है कबो निथना कबो मैं पुनमता मोम लांग थी जगुई सागरी लाथोई कबो मैं पुनमक कोरोनुमिति इमोम लांगलेन थोइबी ना सवांग लाइगी ले मांग द जगोई सागनी हरी सनाई भी मन मधुदा जगोई सागे दन सवांग ले मांग द संचल पुदी फजाई दा सना हन

0: 공군기 토론 따비리
1: Across X, Wahiki Warning Eye Oidri, Hokiba Sehi English Singani Kuni Toidagi, Manipur Gilo Pamda, Sehimari Chupna Sijin Aduna Lakuda, My Park Tuna Laklaba, Across X Sijin Abiu, Pohun Krava, Amadilin Krava Matung, Numit Humpumangani Dagi, Hundrani Sukraba, Wahik Sukta Tadriba, Amadita Krava Lopamda, Hidak Asika Tokpiu, Hidak Asina, Mui with the Kanapa Piba, Nga, Tintro, Karo in a Singba, Sihandi, Across X, Fungfum, AR Agro. Kaisampat amadi adong naknaba tilhat hidak gonfam sing
2: Manipur de laiba municipality sing namasigi boundary manung de laiba property haibadi land and building kuding maki property profile registration tauduna property kuding maki unique property identification number upin pithok chare upin asi phangdriba property mapuna athuba matamda isa isa gi municipality the property profile register tobiduna property identification number sungsoi soidena lobiyu UPIN nasina adongi property adugi saktakchi oina sizin naragani athuba matamda UPIN paibi naba khangan jari municipality khuding makta haukiba chenba chahi lisingani kunmanga kuntaruk tagi hokduna municipality khuding maki manungda laiba property singdagi lopham topa property tax lobagi thabak chathaba haure property singi mapuna chahi gi tipham topa property tax matam chana thidok piduna adongi town bu awonba purakpada saruk yabiu chahi amagi property tax asi chahi khudingi jun tha phawbagi manungda thibiduna Matam chana thibagi rebate phangbagi kudong chaba adusu lobiyu adongi property tax sungsoi soidana ngasimak thidok piyu paujen jariba secretary manipur municipality property tax board
3: khanghan jaba department of social welfare government of manipur na matik chaba miyoi singdagi scheme ahumgi kana balobiyu haina application kauri Scheme Singh Adudi, Manipur All Age Pension Scheme, Chief Minister Widow Pension Scheme, Amadi, Ima Nong Thanglaima Yaifa Tengbang Scheme Ni. Hairiba Scheme Singh Asigi application form, Marilainaba District Social Welfare Office Tagi Natraga, website socialwelfare.mn.gov.in/en/downloads Ta Changbiraga Pangbigani. Marilainaba Chie Chang Su Na Haptuna application form Asi Adom Adomgi District Social Welfare Office Ta Thazin Biu. Form thazin bagi matam September kunithoi dagi October kunthra mathoi English ani kuntaru khawbani khangan jariba Directorate of Social Welfare Government of Manipur
4: Nahak mental health issue galoinana wakhal nuai tanamadi laitadana leiriba misak amara karigumba adom pungning wakhal gi oiba nuai taba leirabadi Telemanas mental health helpline number 14416 da phone dobiyo ekoi ki counselor singawari sanaduna adongi awaba ngasima kokhalase adomna 14416 da call tobiraba matum automatic responder mana language khanabagi damak hairakani matamadu da english ki damak 1 da nambigani hindi ki damak 2 da nambigani amadi manipuri ki damak 4 da nambigani makhata na responder aduna adongi state khanana ba hairakani matamdu da manipuri state ki damak adomna 2 da nambigani masigi matum ekoi ki manipuri language ki counselor amaga adonga wari sanaba yaragani adongi damak manipur tele mental health assistance da matam khudimakta thonglauna hangduna thamjari hen akup marol khangpiningma singna manang nakpada leiba ayushman arogya mandir amadi district mental health program wa tanabiyu paujenjariba national mental health program national health mission amadi directorate of health services government of manipur
5: khanghan jaba social welfare department government of manipur gi mission batshale gi makhada tongan tongan ba category sing da pangthu kodori ba recruitment adugi amic card lakli ba september gi tang 19 da gi horaga october gi tang 2 fawbu gi manung da loisang asigi website www.socialwelfare.mn.gov.in da gi download torba yaragani loinana pangthu kodori ba written examination asigi damak isa isa gi exam center sing Emika tegi khanglaba yaragani haina Sheikh Abdul Hakim Director Social Welfare gi maikai degi phongdorokli
6: Yumnam chagai apokpogi paujel chahi kaya gi mamang degi leptana chathaduna lakpa isok lamlen lamdamda nganthoiriba Yumnam chagai apokpogi khubamda inga tha langban tha amadi poinu tha thanil numitta thauni jabagi thauram chahi asigi langban tha gi oina lakliba September 16 thangja purnima numit asida thokle numit asida chagai gi apokpogi mafamda hairang lairang anau apen kachaduna ayuk pungtare tagi taramathoi makai phawba khurum jagadauri atha pa anakpada leiriba chagai cha singna ira thauni asibu mapung phan biu amasung dhar ni bal oinana langban chara tamba asibu yaubiu hai Paujenjari ba Yumnam Budhamani, Yumnam Ibomcha Amadi Yumnam Ojit.
7: Ang thamaya ilaikai dalaibiramba Sri Thiam Kulavidu Singh, Haukiba September Kunmathoi, Lisingani Kuntarukta, ताइबंग पाल थादोखरे हानगी यारीपोक जूनियर हाई स्कूल आजाद एमी के हेडमास्टर ओइबिरंबा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिसर की थौ पुबिरंबा थबक तगी पोथारब मतुंग खादी बोर्डता से फाइनेंशियल एडवाइजर सोइबिरंबा श्री थियाम कुलविदु सिंह की अस्थि संचय लाखलीब सेप्टेम्बर कुंतरुक अमदे चिरा उत्सव दिन लाखलीब अक्टोबर मरीद थोकले थौरम सिंह असिदा लेखिद्रबगी मरुप मपांग सिंह ना सरुक याबिनबा इमुंग मनुंग ना पाउजेंजरी
0: सतेजरीब थौरम परेंग असिगी पुंगनिपाल कांगला चैनल तहनजगनी सलाय सक्तम लांग कांगलुकी रेडियो लीला अखोगे बोक अरुइब सरुक पुंग तरा थमजरी अदुम पोस्टकार के खुथांग खनबिरपा फर्मिसे आगस्ट बानी इम्फाल हौजे नुमिदांग पुंग तरे मखाई तारे मणिपुरी दपाउ ताबिरसे
8: आकाशवाणी इम्फाल वहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी आहनबद मरुएब पाव मणिपुरी फोक थिएटर अमसुंग खोकजोम परबना चिंगबा मांगकीबा हाइबसी लमदमसिगी ओइना मांगजबनी हाइना सखनायबा थिएटर पर्सनालिटी अरिबम श्याम शर्मना हाइरी मणिपुर स्टेट म्यूजियम लिंखकीबगी यांखैतरे चुब फाउंडेशन डे ngसी पांगथोकरे था अमा चुपना चथगदबा सेवा संकल्प अभियान कैंपेन की सरुग अमोइना तोंगान तोंगानबा थोरम सिंह राइज सिनबा थुंगबा पांगथोकले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाई नहा सिंह होनाजमन लेबाक असिबो इं कुमजा लिसिंग अनी निपु तरी की ममांग चौकटब लेबाक सोईदनागमलगनी आईसी नगोया एशियन गेम्स मीराबाई चनुना लुपा की तगमा लौरे नाउरेम रोसीबीना वुसू की फाइनल चंगले मणिपुर की फोक थिएटर अमसुंग खोंजोम पर्व नचिंब मांगकीब हाइबसी लमदम मसिगी ओइना अचौब मांगजबनी हाइना सखनारब थिएटर पर्सनालिटी अमसुंग फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मना हाइरी राइजसिगी ख्वाइदगी अरिब थिएटर अहुंगी मनुंग दा अमा ओरिबा आर्यन थिएटरगी मरफुद्रा माथोइसुब मपो कुमोन थौरम दा वा गांगबदा श्याम शर्मना हाइ हौजिकी मिरोलना खोंजोम पर्व गुंब यामना मरुएबा सैसक मसक खंगलतबा असी यामना लाइबक थीबनी करीगुंब खोंजोम पर्व हाइबा आर्ट फॉर्म असी लेरमद्रबदी अखोइना खोंजोम लाल की मरम दा अमसुंग खोंजोम नुमिना चिंगबा पांगथोकलिबा सिंग असी खंगबदा वाना थोकलमगनी मांग हाई अखोइगी अहल लमन सिंह थिएटर लिंगलमलिबा असी मणिपुर की थिएटर बु नुंसीजबा अमसुंग मसीबु कन्नबगी दमा कथोकपग लोइनना होना जरमबगी मपालना ngasi फाउब हिंगदुना लेबा गमलिबनी महागना हाई
9: अलमान हटना मणिपुर की कलचर की होना रही मकई कानग एस्थेटिक सें मणिपुर की अखो मणिपुर ने तक हम अंगा पोटी थिएटर दो थिएटर की फिल्म कन्नी वो कदा हेरब फोक थिएटर मांगे मणिपुर की चौरब थिएटर मांगी खोदों पर्व मांगी अंग खोदों पर्व हजीदी थी खोदों पर्व सिंह सामद्रब मणिपुर खोदों लांग तौम से नेवर ले
8: इम्फाल की वहेंगबम लेकाईद मल्टीपर्पस हॉल पांगथोकिब थौरम वांगा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की जोनल डायरेक्टर मुनीस निंगथोकजम हाई मणिपुर की थिएटर असी मखा ताना मालिंग की मफम क्या संदोप की तंगाइफदब ले मसीगीदमक थिएटर की इंफ्रास्ट्रक्चर निंगथीना अमसुंग मपुंग फाना सेंगप चंगे मसीदा काउंसिल ना पांग याब मतेंग पांगनी थौरम आर्यन थिएटर की लाइफ मेंबर अनी अमसुंग कुमसी सही असिद लेखिद्रब मेंबर सिंगी इमुंग मनुंग इकाई खुमनब उत्की थौरंग मरी लेना खेंजोंग लांग थिएटर की डायरेक्टर डॉक्टर सनबम थानी लेमना मणिपुरी थिएटर आर्यन थिएटर ने लौरीब थौदांग हाइबसिगी मतांग दा वा गांगकी थौरम दर रूप मोहल थिएटर की वाइस चेयरमैन लोइटोंगबम ब्रजमोहन सिंह सरुक याकी मणिपुर स्टेट म्यूजियम लिंखकीबगी यांखैतरे छुब फाउंडेशन डे ngasi पांगथोकरे आर्ट एंड कल्चर विभाग ने सिंधु ने इम्फाल लेब मणिपुर स्टेट म्यूजियम पांगथोकीब थौरम आर्ट एंड कल्चर की सेक्रेटरी नाउरेम प्रवीण आर्ट एंड कल्चर की हानगी डायरेक्टर डॉक्टर के सोबिता देवी अमदी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एम जॉय सिंह सरुक याकी थौरों की सरुक अमोइना म्यूजियम क्रॉनिकल कौब बुकलेट अम फोंखी मणिपुर स्टेट म्यूजियम सना अरीब कलेक्शन सिंगी एग्जीबिशन हांगदोकी एग्जीबिशन असी हयेंग फाउबा चथगनी MLA Thaunakjam Basanta Kumar ngasi Nambol Municipal Council gi manung chane laiba Nambol Laitonjam da Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana gi Health Card cha mani puni thoi yen thokre Ayushman Bharat na chahi nipan mapung pharpa ga mari lena pangtho patharom adu da wangang mada Shri Basanta Kumar hai miobegi punsi da ana ek thorpa matamda sel gi awaba kaya maiunari ba asigi yeng laga Pradhan Mantri Narendra Modi na thauksilasi haudoki bani thauksilasi na ngasi di micham miangi punsi da ana laengi lamda chaun mateng ama oiri Card as he pirate mui singa, money puda da natana, baraki atima pum singa, lying bamatamda, lupa lang mangagi canaba, pangani.
10: Guwahati da masih di kamu selopi agni, Delhi selopi agni, anywhere India ni negara hospital sini, am sida masih kamu selopi agni, esnya ame terjadi.
8: Paugi merakthana break ama.
11: Langmi isilinaw singgi damak ngayraba paujalama puduna lakseri black gold ising phangde lou pan bathenge haibagi awaba karim talibira black gold kapana nimitara mangani ngang khatna lou lohali lairang amom nehna marang kaina salali phongmaru yam changali phokthok hengalali black gold kaphou dabana mangjagador bisi adomni langmi sing ai isade kapseri adom su kapi phangpham thaujal agro manipur sagolban mainol lera
8: tabiriba pawasi akashwani imphal degini Seba Sankalp Abhiyan campaign gingasi nini chanba numita none jila da zonal education office none na sinduna laiyekpa amasung ese ibagi changdamna ba pangthoki my vision of biksit manipur lisingani nifutare haiba hiramda pangthoki ba changdamna

पागी बे मा इपान हारी बसनी सिरगी हेन मलाइत्र बनी वाद ताप द सनि खोंबिना खै बाबुंग से ngau रे सिरम दाई की पेन सोय रे आ मिनाय नु बिसि द खोर मोयने अदु बम तंग येंग नु येंग उ मतम दती सनि खोंबि सा हेलावि खोंग दगी तोन भव तु ख्याओ सोंगी पागी पाखोंग नि दुदा पिन पुंचो चोट लेरगा लेरांग मान भी थुई भी बुयेंग करी हाइन हाइरे ई

पर हमें तो बिल्कुल प्यार है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से, है ना? सही कहा ना? आपने सुना ये गीत फिल्म रंग से, जो कि 1993 में आई। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज और नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत, और इसे फिल्माया गया दिव्या भारती और कमल सदाना पर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। जी हाँ, आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम हर श्रृंगार में, और मैं हूँ आपके साथ रितिका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आपने ये गीत सुना रामलखन फिल्म से। जी हाँ, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज, और इस गीत को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को लिखा आनंद पक्षी ने। जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया ये गीत। हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ दीप शिखा सिकरवार. दीप शिखा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध जी. गुड इवनिंग सरबजीत.
0: गुड इवनिंग मैम.
1: पहले हेडलाइंस सरबजीत से.
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex gains 299 points, Nifty settles nearly 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near two-week low. Brent hovers around $100 per barrel.
1: प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 299 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,450 के पास पहुंचा. वैश्विक रेटिंग एजेंसियों फिच और एसएनपी ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान क्रमशः 6.9% और 7% ठहराया. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें लगभग दो हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर. ब्रेंट क्रूड लगभग $100 प्रति बैरल पर.
0: And listeners, before we take you through the economic news of the day, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: चले अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज बढ़त का रुख रहा. सेंसेक्स 299 अंक यानी 0.4% बढ़कर 74,828 पर बंद हुआ. निफ्टी 118 अंक यानी आधा प्रतिशत ऊपर 23,447 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अन्य सूचकांक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.7% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से आज बाजार बढ़त के साथ खुले और दोपहर में थोड़े उतार चढ़ाव के साथ और ऊपर बढ़ते गए. लेकिन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैश के बाद बाजारों के बंद स्तर में थोड़ी और बढ़त दिखाई दी.
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today. The Sensex rose 299 points or 0.4% to close at 74,828. The Nifty jumped 118 points or 0.5% to settle at 23,447. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index climbed 0.7%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.9%. Earlier, markets opened with marginal gains, tracking positive global cues and easing crude oil prices, then extended those gains into the afternoon before pairing some of the advance. However, after the closing auction session, CAS, the benchmark indices closed slightly higher than their pre-CAS levels.
1: जी, और देखें सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल रहा है. 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें. टाटा स्टील में 3.3%, बजाज फाइनेंस में 3.1% और आईटीसी के शेयरों में 1.8% की बढ़त हुई. इसके उलट एचसीएल टेक में 1.1%, इंफोसिस और टीसीएस में 1.1% और टाइटन में 0.6% की गिरावट देखी गई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, metal climbed 2.4%, commodities increased 1.6% and mid-small private banks rose 1.5%. In contrast, focused IT lost 0.9% and IT fell by 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,752 companies advanced, 1,655 declined and 190 remained unchanged. Deepshika, after these figures.
1: हाँ इस ये चर्चा शुरू करने से पहले एक और चीज जोड़ दूँ मैं सरबजीत रुपए का हाल हम बता दें
0: जी
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया 16 पैसे घटकर 95.75 रुपए पर बंद हुआ
0: Deepshika, coming back to you, we just went in detail with the figures and we spoke about the various sectors. So when benchmark indices rebound after a period of weakness, what does this movement generally indicate about the market sentiment?
2: Sarabjit, if you actually see the way markets have behaved, and today should not be seen in isolation. There has been a pattern, if you see, which has been there for a while. It gets battered continuously, and then there will be some, some upward movement that comes in with some buying interest, you know, which comes around. But I think investors need to make a very cautious call at this juncture in view of what the global factors are. A, there is crude, which is there on the horizon. It has inched up in view of the West Asia crisis. The other crucial factor is what happens in the US. We've seen the Fed has raised rates. There's also indication that there could be another rate increase coming in. Impact of that, which is being felt in the currency markets also. So all these factors need to be sort of taken into account when you actually are betting or buying, particularly for short term.
1: जी दीपशिखा आपने कुछ कारक तो गिना ही दिए अभी जिनका उल्लेख मैं करना चाहता था लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी हर जगह के जितने भी हम मार्केट्स पर नज़र डालते हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं लगातार आपने अमेरिका का उल्लेख किया अभी फेड रेट्स का उल्लेख किया आपने इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कल नैसडेक या पिछले दो दिनों में काफी सकारात्मक रहा और बिल्कुल काफी
2: बहुत
1: अच्छा
2: रेजिलियंस
1: रहा
2: बहुत
1: जबरदस्त
2: रही है हाँ.
1: वो हमारे बाजारों पर दिखाई नहीं देता है
2: बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक बहुत अजीब कहना चाहिए बहुत ही एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो काफी मजबूत स्थिति में है आज भी जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं बहुत बेहतर हैं लेकिन जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के सामने खास तौर पे अगर हम देखें क्रूड को लेके या वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखें तो वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है तो ये ओवरहैंग जो बाजार पर बना हुआ है और ये काफी कुछ समय हो गया है इसको चलते हुए दूसरा कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आईटी क्षेत्र में जो आशंकाएं हैं वो बराबर बनी हुई हैं एल नीनो का जो है आउटपुट पर कृषि के उस पर क्या असर होगा वो आशंकाएं हैं उस पे अर्निंग्स में कंजम्पशन

0: में हालांकि अभी मजबूत है कंजम्पशन, लेकिन कुछ एक ओवरहैंग सेंटिमेंट में ऐसा बिल्ट अप हो रहा है. तो मुझे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, हो सकता है कि थोड़ा उस तक अगर वैश्विक स्थिति थोड़ी सुधरती है तो शायद बाजार भी थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ेगा.
1: Deepshikha, since you touched upon the projections part, let's first see what have been the projections as of now. Fitch Ratings has raised its forecast for India's GDP growth in the current fiscal year to 6.9%, up from its earlier projection of 6.4%. In its June Global Economic Outlook, the agency attributed the upward revision to strong first quarter growth and the resilience of the Indian economy. However, Fitch expects economic momentum to moderate during the second half of the fiscal year. It also anticipates that the Reserve Bank of India may raise interest rates by 25 basis points at its October monetary policy meeting, citing strong domestic demand, rising prices, and adverse supply side developments. Consumer spending growth is expected to slow to 5.7% in financial year 27 compared with 7.2% in the previous financial year. Fitch projects India's GDP growth to ease further to 6.5% in financial year 28, while inflation could rise to 5.5% by December 2026.
2: Ji, aur iske sath hi Standard and Poor's S&P Global Ratings ne bhi चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक गतिविधि पर अपनी रिपोर्ट में एसएनपी ने बताया कि विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं मजबूत औद्योगिक गतिविधि, स्वस्थ उपभोक्ता मांग, मजबूत वस्तु निर्यात और बढ़ता सरकारी निवेश. उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसतन 5.1% रहेगी. हालांकि एसएनपी ने चेतावनी दी है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास कमजोर हो सकता है क्योंकि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने और आयकर कटौती का लाभ धीरे धीरे कम होता जाएगा. एजेंसी ने मौसम संबंधी जोखिमों का भी उल्लेख किया है. उसके आकलन के समय कुल वर्षा सामान्य से 15% कम थी, इसलिए कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा. दीपशिखा, अभी आप जिसका उल्लेख कर रही थी मौसम, एलनीनो और अब इसमें जीएसटी का जिक्र आ ही गया है, आयकर कटौती का भी उल्लेख आ गया है. इसके अलावा लेकिन जो जो खासकर हम फिच रेटिंग्स पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ और भी रेटिंग्स आई हैं दुनिया में. माहौल है कि भारत की
0: बिल्कुल अगर आप देखें तो आज जो है ओईसीडी ने भी अपना आउटलुक निकाला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और दोनों ने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा दिया है. तो ओईसीडी ने उसको 7.1% कर दिया है 6.3% से, और एडीबी ने भी 7% कर दिया है 6.6% से. और सभी एजेंसियां ये कह रही हैं कि भारत में एक तो सर्विस क्षेत्र जो है, उसके अलावा निर्यात क्षेत्र ने जिस तरह का मजबूती दिखाया है, खासतौर से हम जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र के सामने आई थी, तो उसके अलावा सरकार की तरफ से खासतौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिस तरह का बढ़ाया गया और जिस क्षेत्रों पे खर्चा किया गया, तो उसका असर जो है अब निजी क्षेत्र के भी निवेश पर नजर आ रहा है, जो कि जीडीपी के आंकड़ों में भी सामने आया था, और इन एजेंसियों ने भी यही चीज दोहराई है आज.
2: जी,
1: सो दीपशिखा, वी लाइक टू टेक यू बैक टू द फिच रेटिंग्स एंड वी लाइक टू हैव योर वर्ड ऑन दिस. व्हाट डज दिस अपवर्ड रिविजन टेल अस अबाउट द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी?
0: Sarabjit, you know, we've been discussing this, you know, and like I said earlier, Indian economy is in a very strong position. The data is clearly showing that there is strong consumption, which the data showed us. private investment, which was one of the key challenges, is now begin to show some movement there. So which was the greatest news? So despite all the challenges which these agencies have highlighted, it needs to be seen that overall the situation of the economy remains robust despite the risks which have been flagged. There is inflation risk which has been flagged, and also the El Nino risk, which can impact farm output, which can therefore have some implications for the demand. Whether this would translate to markets, like I said, maybe you could see the festive season sort of brings in back that kind of strength which the economy is showing in the markets.
2: Devshika, jo jiska ullekh abhi S&P ne kiya hai, jo char factors bataye hain ki mazboot audyogik gativithiyan hain hamare yahan aur upbhokta mang kafi achhi hai aur vastuon ka niryat kafi मजबूत हालत में है और इसके साथ बढ़ता सरकारी निवेश भारत में और हमारे जीडीपी में अगर हमेशा से हम देखें तो ये सरकारी निवेश वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से अभी क्या हालत है और कहां कहां इसमें बढ़ोतरी हुई है जिसका असर हम देख सकते हैं जो इन प्रोजेक्शंस में दिखाई दे रहा है
0: अगर आप देखें सरकारी जो निवेश है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है कोविड के समय से और चूंकि सरकार ने ये देखा कि जो जिस तरह का संकट देश के सामने था उस समय निजी क्षेत्र जो है वो निवेश नहीं कर सकता था तो सरकार ने खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सेक्टर स्पेंडिंग अपना बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से निवेश किया गया अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हाईवे सेक्टर रेलवे सेक्टर सभी क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी हद तक पुश किया गया अगर आप देखें रेलवे का उदाहरण ले रेलवे काफी हद तक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल का जो बजट है उसको काफी हद तक वो टारगेट्स अचीव कर चुका है तो ये एक जो पुश है बराबर सरकार की तरफ से की जा रही थी और उससे ग्रोथ को काफी बल मिला है जो क्षेत्र जहां पर खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं वहां पर बहुत बल मिला डिमांड वहां क्रिएट हुई है और अब उसका असर जो है फाइनली नजर आ रहा है जिस तरह से निजी क्षेत्र का निवेश अब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है कुछ क्षेत्रों में तो उम्मीद की जाती है कि ये आगे मजबूती पकड़ेगा और जैसा कि हम कह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में ये मजबूती जो अर्थव्यवस्था की है वो निवेशकों को बाजार की तरफ और आकर्षित करे और बाजार में मजबूती आए लेकिन हाँ बाजार का एक सेंटिमेंट जो है जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे उस पर बातचीत कर रहे थे वैश्विक स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं है बहुत चुनौतियां हैं वहां पर तो अगर वैश्विक स्थिति जो है वो अनुकूल रहती तो हो सकता है भारतीय बाजार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता
2: जी हम कह सकते हैं कि हम टिके हुए हैं और खास करके जो जीडीपी के अनुमान है ये तमाम संकटों के बावजूद बेहतर
0: बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में टिकी हुई है आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं
2: जी और अगली खबर है भारत कनाडा व्यापार पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कार्नी ने यह भी कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के आसपास कनाडा की यात्रा करेंगे हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बात कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही प्रधानमंत्री कार्नी अगले दशक में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों के साथ कनाडा के व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य अमेरिका पर कनाडा की निर्भरता को कम करना है दीपशिखा ये जो कनाडा और अमेरिका का पुराना रिश्ता था उसके बिल्कुल नए आयाम दिखाई दे रहे हैं अब।
0: बिल्कुल, देखिए जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है वो अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से एक नया ही जो जियोपॉलिटिकल कहना चाहिए अलायंसेस जिस तरह के उभर रहे हैं और मतलब जो ग्लोब है उसका स्थिति बदलता जा रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है उनको मैनेज करना और इसीलिए सरकार जो है इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उन पे बहुत फोकस कर रही है
2: जी। और एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% बढ़ा, जापान का शेयर बाजार आज भी बंद है।
1: Well, moving on further with our stories, U.S. President Donald Trump has defended his administration's military action against Iran in an address to the 81st U.N. General Assembly in New York yesterday. He urged countries to maintain economic pressure on Tehran and said Iran faces a choice between reaching a deal and facing further U.S. military action. Mr. Trump said the United States had targeted Iran's nuclear program and weakened its military capabilities. He reiterated that Washington would not allow Iran to acquire nuclear weapons. He urged for the complete economic isolation of Iran.
3: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror, and oil prices will come plummeting down even lower than they were at the start of the conflict, and they were very low.
1: Meanwhile, U.S. President Donald Trump has said his administration strongly supports the India-Middle East-Europe economic corridor. President Trump made the remarks while addressing a meeting with Gulf Cooperation Council and Arab leaders on the sidelines of the UN General Assembly. He said there is a need to shift Middle East energy infrastructure away from Iranian checkpoints amid multiple strikes on West Asian countries during the war.
4: Iran's terrorist attacks on commercial shipping in neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the India-Middle East-Europe economic corridor and other places, a form of getting oil out, pipelines or anything else. And together we're on the verge of overcoming challenges that have plagued this region for decades.
1: So Deep Shikha, against the backdrop of a rapidly changing geopolitical landscape, what significance does President Trump's this address to the 81st UN General Assembly hold for the international community?
0: Global community was expecting some kind of direction or some kind of indication from President Trump's address to UN General Assembly on which way the conflict in Tehran will take course. And it looks clear that as of now, I think the cues are that it's not coming to an end very swiftly. While he's appealing to the global community to come together and allow not allow Iran to acquire nuclear weapons, but I think the cues are that it will probably continue for some time. But I think the most important takeaway for me is, I think, his endorsement of India Middle East Europe economic corridor. I think this is something which India has been sort of stressing on the importance of it, and this endorsement definitely sort of reiterates what India has been pushing for.
1: Addressing the India community of Latin America and Caribbean states, CELAC foreign ministers meeting during the UN High Level Week 2026 in New York, External Affairs Minister S. Jaishankar called for stronger economic and development partnerships between India and the CELAC. He said India-CELAC trade has now crossed $50 billion annually.
5: India-CELAC trade has now crossed over $50 billion annually. Yet there is much more room to progress. Our strengths are highly complementary. India brings technology, pharmaceuticals, skilled resources, digital capabilities, and a large and growing market. While the CELAC offers opportunities in critical minerals, sustainable energy, agriculture, food resources, and other natural assets, our own growing middle class makes us a natural partner for each other.
1: So there's a call for a stronger India-CELAC cooperation, a greater voice for the global south. Deepshikha, we'd like to know from you, against the backdrop of changing global equation, how important is greater cooperation between India and the Latin American and Caribbean region?
0: See, like we discussed earlier, you know, India is trying to forge alliances with different countries and global south. Definitely, this was the theme at G20 also. That's a big focus area for India. Latin America, as we know, they have some critical minerals, and we are trying to reach an agreement with them on supply of critical minerals. So definitely a big focus area for India is forging these multiple trade alliances with multiple trade partners to secure resilience of its own supply chains.
2: जी और नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचा अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा. इस ढांचे के तहत ₹2,000 तक के यूपीआई लेन देन पर शून्य एमडीआर लगेगा. आपको यह शंका हो सकती है कि क्या यूपीआई के माध्यम से दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने पर कोई शुल्क लगता है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा है कि पर्सन टू पर्सन लेन देन भुगतान करने वाले यानी पैसा भेजने वाले और लाभार्थी यानी पैसा प्राप्त करने वाले दोनों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा. यूपीआई का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी राशि ट्रांसफर करने या प्राप्त करने या यहां तक कि खुद के खातों में भी ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. नागरिक बिना किसी लेन देन शुल्क के किसी भी स्वीकृत राशि का यूपीआई पर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं.
1: Global crude oil prices rose today but remained near a two-week low as concerns over rising supplies continued to weigh on the market. Brent crude was trading 1% higher at $100.19 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $90.61 per barrel at the time of writing this report.
2: तेल पर छोटी सी बात बता दें दीपशिखा.
0: तेल तो बहुत ही अनसर्टेन हो गया है. हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक तेल पर प्रेशर बना रहेगा. भारत के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है.
2: और भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर ₹1,52,016 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. चांदी मामूली गिरावट के साथ ₹2,32,766 प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. और दीपशिखा आज वक्त इतना ही है. हालांकि चलते चलते हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो सोने और चांदी का हाल था पिछले एक दो सालों में हमने जो हाल देखा था कई लोगों के लिए बहुत अच्छा निवेश साबित हुआ था. लेकिन अब देख रहा हूँ वो शायद उतनी ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है या इतने पीक पर पहुँचा हुआ है कि अब लोग बहुत ज़्यादा इस पर भाव नहीं दे रहे.
0: बिल्कुल. जो एक एकदम तेजी जो आई थी दोनों सोने और चांदी के दामों में वो थोड़ी सी ठहर गई है, थोड़ा ठहरा हुआ है. तो अब जो अगर निवेश भी है वो लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए उस पर आपको देखना होगा.
2: जी देवशिखा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
1: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स गेन्स 299 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स नियरली 24,450. ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज फिच एंड S&P ग्लोबल रेज इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.9% एंड 7% रिस्पेक्टिवली फॉर दिस फिस्कल ईयर. एंड ग्लोबल crude oil prices slipped to near two-week low. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

1958 में आई फिल्म मधुमती से आपने ये गीत सुना। सलील चौधरी का संगीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में लिखा ये गीत शैलेंद्र ने। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में बस इतना ही। अंजू आ चुकी हैं स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। आप सबको छोड़े जाती हूँ उन्हीं के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। जी हाँ, जिसे सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुझे दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार नियामक सेबी लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव उत्पादों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य वायदा एवं विकल्प खंड में जोखिम प्रबंधन और वित्तीय क्षमता अनुसार तथा दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे निवेशक सुरक्षित ट्रेड करें और धीरे धीरे मुनाफा कमाएं। राजस्थान के जोधपुर में कल एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें आग बुझाने के प्रयासों के दौरान विस्फोट में 13 अग्निशमन

समय हुआ है 12:11 और 3 सेकेंड और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आज अंजू आपके साथ, लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। प्यार भरे नमस्कार के साथ शुरुआत कर रही हूँ इस कार्यक्रम की और खूबसूरत गीतों की। इस दुनिया की दौड़ में सब कुछ कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई पैसा, कोई शोहरत और कोई कामयाबी, पर मेरी तलाश तो उसी दिन तुम पर खत्म हो गई जब तुम मिले, और अब कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं बची। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हें पाया तो जैसे खुद को पा लिया, तुम्हें पाया तो जैसे खुद को पा लिया, तेरी धड़कन को अपने दिल में ही बसा लिया। अब जमाने से मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, खुदा से जो मांगा था वो मैंने तुमसे पा लिया।

अच्छा सुनो, दुनिया ला खूबसूरत सही, तेरे मेरे लिए सबसे हसीन नज़ारा तुम्हारी ये आँखें हैं। जब तक इनमें मेरे लिए मोहब्बत है ना, मुझे जिंदा रहने के लिए भला किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। तेरी नज़रों के साए में मिला है मुझे वो सुकून, जिसे ढूंढती फिरती रही। अब हर लम्हा बस मेरी यही चाहत है कि तू ही मेरी जिंदगी में रहे और तू ही बने मेरा सुकून।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा। मैं हूं आपके साथ अंजू।

पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी इन आंखों में और इस सादगी में। मैं लाख संभालूं इस दिल को, पर तुम्हें देखते ही न जाने कहाँ खो जाता है। तुम्हें देख न जाने क्या हो जाता है, हर एक पल में ये दर्द कहीं खो जाता है। तुम मुस्कुराकर बस देख भर लो हमें, तो ये बिखरा हुआ समा भी खूबसूरत हो जाता है।

एक बात याद रखना, आजमाने के लिए तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे इस दुनिया में, पर मेरी तड़प कर भी, मेरी तरह तड़प कर मुस्कुराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इस तरह ना आजमाओ मुझे कि मैं पत्थर हो जाऊं, इस तरह ना आजमाओ कि मैं पत्थर हो जाऊं, तेरी यादों के समंदर में कहीं खो जाऊं। रख लो मुझे समेट कर अपने पास ही यहीं कहीं, ऐसा ना हो कि मैं गुजरा हुआ कल हो जाऊं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दुनिया के लिए सिर्फ कुछ लफ्ज हो सकते हैं, पर मेरे लिए ये मेरी पूरी कायनात है। अगर बुरा ना मानूं तो अपने दिल की बात कह दूं आज कि इश्क है तुमसे कोई दिल लगी नहीं, तुम्हारे बिना अब ये जिंदगी जिंदगी नहीं। खोल देना चाहते हैं आज दिल की किताब को, कह दें वो बात जो अब तक किसी से कही नहीं।

दुनिया की कोई भी चीज अब उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितना तुम्हारा चेहरा लगता है। जब भी अब आंखें बंद होती हैं सिर्फ तुम्हें ही देखती हैं। अब तो बस इस दिल की एक ही जिद है कि तुम्हें बस अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, दुनिया की हर नजर से तुम्हें छुपाना चाहते हैं, कोई और अक्स ना आ सके इन नजरों में। इसलिए खुद को तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं।

दोस्तों अब समय है समाचारों का, 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीय पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों की ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी से लाए गए 12 किलो सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी रोकने के लिए कई बार कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपये मूल्य का 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की निशानेबाजी स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेक सिंह गिल और मेराज अहमद खान को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खिलाड़ियों ने एकाग्रता और बेहतरीन टीम वर्क प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री ने भविष्य के प्रयासों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में

0: आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाश।

रात के सुहाने सफर में शुरुआत हो चुकी है अपने आपके अपने खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। एक बार फिर से मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। समय हुआ है 1:11:23। इस घंटे आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। चंद अल्फाज शायरी लिए हुए, जब थाम लिया तुम्हारा हाथ तो इस जमाने से क्या डरना, जब थाम लिया तुम्हारा हाथ तो इस जमाने से क्या डरना, और क्या ही खौफ हो किसी का जब ये मोहब्बत बहुत शिद्दत से की हो।

अजीब बात है ना कि ये चांद आज ना जाने क्यों हवा में कहीं खोया सा है। तेरा चेहरा इसे दिखाई नहीं दिया तो इसका नूर भी आज फीका सा है।

पता है, कभी कभी लगता है कि हम अपनी जिंदगी खुद लिख रहे हैं, पर मोहब्बत के रास्ते पर पैर रखते ही समझ आता है कि कलम तो भाई किसी और के हाथ में है, हम बस चलते जाते हैं ये जाने बिना कि मंजिल कहाँ है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत की कहानी भी बड़ी अजीब है, न जाने कहाँ रुकती है। मोहब्बत की कहानी भी बड़ी अजीब है, न जाने कहाँ रुकती है, कभी पल भर में मुकम्मल तो कभी ये उम्र भर की कसक छोड़ जाती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, समय हुआ है 1:28:13। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ अंजू। तेरा मेरी जिंदगी में आना जैसे किसी दुआ का कबूल होना है। अब इस दिल का हर लम्हा बस तेरे ही इर्द गिर्द घूमता है।

दूरी तो सिर्फ फासलों की होती है, दिल के रिश्तों में तो जब भी किसी को महसूस करो तो वो धड़कनों में हाजिर होता है। आसपास ही महसूस करती हूँ तुम्हें हर लम्हे में, आसपास ही महसूस करती हूँ तुम्हें हर लम्हे में, जब भी सोचती हूँ तुम्हें तो तुम मिल ही जाते हो मुझे मेरे ही दिल में।

आपको रोकने की जिद नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिल से रुकना ना चाहे उसे जबरदस्ती रोका नहीं जाता। बस कुछ पल और बैठिए, फिर शौक से चले जाइएगा। चले जाइएगा शौक से, पर अभी जरा ठहरिए तो सही। इस दिल को आपकी मौजूदगी से थोड़ा बहलने तो दीजिए सही।

हम राहों में खड़े हैं तेरी, कोई शिकवा नहीं जमाने से, बस एक बार तुम मिल जाओ तो लौट आएंगे हम इसी बहाने से।

जो सिर्फ लफ्ज में बयां हो जाए वो मोहब्बत कैसी, और जिसे मापा जा सके वो शिद्दत कैसी। हमारा इश्क तो पैमाने से बहुत ऊपर है, मोहब्बत को मापना हमें नहीं।

तो इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगी कार्यक्रम रात सुर में ही लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी

0: व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारों को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रूपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में संशोधित उड़ान योजना लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आंध्र प्रदेश उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने इस योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य किफायती हवाई संपर्क का विस्तार करना और कम सेवा वाले और सेवा रहित क्षेत्रों में विमानन बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा डिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations.

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 5 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। एक बार फिर से मैं अंजू करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के बहुत ही मधुर गीत के साथ।

कुछ रिश्ते ज़मीन पर बनते हैं और कुछ कहते हैं कि आसमान है, पर हमारा रिश्ता तो सीधा दिल से दिल के बीच बना है। इसलिए इस दुनिया को क्यों बताऊं कि क्या रिश्ता है तेरा मेरा, ये तो लफ्जों में बयां भी नहीं होता। लेकिन तू पास ना हो तो इस दिल का कोई ठिकाना भी नहीं होता। हाँ।

कहते हैं जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पास आ ही जाता है। और आज तुम्हें अपने सामने देखकर बस यही ख्याल आ रहा है कि यूं मिल जाओगे तुम मुझे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। यूं मिल जाओगे तुम मुझे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तेरी एक मुस्कुराहट मेरी पूरी दुनिया ही बदल देगी, ये तो मुझे एहसास ही नहीं था।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जुबान खामोश है तो क्या हुआ, आंखें तो सब सच बोल ही देती है ना। जब दिल में कोई बस जाता है तो ये नजरें अपने आप गवाही देने लगती हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि चुपके से नजरों का मिलना और मुस्कुरा देना, चुपके से नजरों का मिलना और मुस्कुरा देना, देखो देखो जरा इन निगाहों को, सीख लिया है किस तरह से दिल चुरा लेना।

वैसे तो अक्सर हम खुद को बहुत संभाल कर रखते हैं, हर बात पर काबू रखते हैं, लेकिन जब तुम सामने आते हो तो ये सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। सच तो ये है कि तुम्हें देखकर हम कहीं खो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि तुम्हें देखकर इस कदर हम होश खो बैठे हैं, तुम्हें देखकर इस कदर हम होश खो बैठे हैं कि ये जो दिल है हमारा, हमारा है ही नहीं, हम तो तुम्हारे ही हो बैठे हैं।

समंदर चाहे कितना भी गहरा हो, मिल ही जाते हैं दो किनारे। समंदर चाहे कितना भी गहरा हो, मिल ही जाते हैं दो किनारे। और मिल जाते हैं वो जिन्हें मिलना होता है, कभी ना कभी तकदीर के सहारे।

दोस्तों अब हो गया है वक्त चलने का, क्योंकि स्टूडियो में आ चुके हैं भारती अगला कार्यक्रम लेकर हमराही। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री टोबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी स्मार्ट एयरफील्ड

0: हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई महल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव देवजीत सौकिया ने कहा है कि मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त होने तक बोर्ड के पास पर्याप्त समय है और इसके बाद ही इस पद को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अजीत अगरकर ने 18 सितंबर को BCCI को बताया था कि वे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपने 3 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। श्री सोकिया ने मीडिया से कहा कि BCCI जब भी निर्णय लेगा उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओमेन वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

रात की खामोशी में जब दिल अपने सबसे करीब होता है, अपनी ही सुनता है, तब कुछ रिश्तों की यादें जानने की तरह मन

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हमराही। आधी आधी रात सरकती जाती है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ मीठी यादें हैं जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कितने ही साल गुजर जाएं, सच्चे साथ की गर्माहट कभी पुरानी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदलते नहीं, बल्कि हर बीतते साल के साथ और मजबूत होते जाते हैं।

जब कोई कहे साथिया तुम मेरे सपनों के मीत हो, तो लगता है जैसे रात की तन्हाई में दिल ने अपने सबसे खूबसूरत एहसास को शब्द दे दिए हों।

इन मधुर गीतों के साथ इस सुहानी रात की यादों को, मोहब्बत को और खूबसूरत एहसासों को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। अब मुझे दीजिए अनुमति, छोड़ के जा रही बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। नमस्कार। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा, भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्माकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा है कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के तथा तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रूपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी आ सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म डिस्को डांसर के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है पप्पी लहरी ने, और संगीतकार पप्पी लहरी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। अभी आपने गीत सुना फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म शौकीन से किशोर कुमार की आवाज में संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार योगेश।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म मोहम्मद रफी, क्षमा कीजिएगा, फिल्म आमने सामने से मोहम्मद रफी की आवाज में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद बख्शी।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म चलती का नाम जिंदगी से, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मना दे की आवाज में। गीतकार इशात और संगीतकार किशोर कुमार।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुलाकात होगी 5:10 पर प्रोग्राम भोर सुहानी में। छोड़ के जा रही हूँ बहुत ही प्यारे गीत के साथ। गीत है फिल्म दो दिशाएं से, यशुदास की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन OIC के तथा कथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।

0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। एशियाई खेलों में रोशीबीना देवी नाओ रेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह, नरुका महराज, अहमद खान और भवतेग सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L69 consultative ministerial interaction on UNSC reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. He stressed that continuing to delay reform perpetuates historical injustice. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation Contact Group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Election Commission has said that all the decisions, including the electoral roll revision, were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives, and undertaken many electoral reforms, including special intensive revision, in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ।

प्रकृति अपनी सुंदरता और सुगंध से वातावरण को खुशनुमा बनाती है, जिससे हमारे जीवन को आनंद और शांति मिलती है। तो इसलिए नेचर की जो सुंदरता होती है ना, उसे देखकर हम अपनी परेशानियाँ, अपने दुख थोड़े कम कर जाते हैं, कम हमारे कम हो भी जाते हैं। तो इसलिए नेचर का हमें थोड़ा सा ही सही पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।